0: ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म अव्यद्देवता ब्रह्म इत्यार्षं गायत्रं छन्दं परमात्मं स्वरूपम् आयुज्यं विनियोगः ओंकार में तीन अक्षरों के योग है लेकिन उच्चारण करते समय अल्र के वो एक ही भारतीय साया वरट
1: में ओम ही
0: लन
1: भारतीय
0: नम नम
1: भारत
0: जब गे
1: एक
0: छठ तव
1: ओंकार
0: भावे
1: पुरा